0: ए श्याम भाइ, त्यो पारीको बाटो बनाउने भनेर काम थालेका थिए तर रोकिएछ, किन हो? तिमीलाई केही थाहा छ?
1: खोइ दिदी, ठेकेदार र पालिकाले बजेट पुगेन भनेको छ रे, के भएको हो कुन्नी?
0: त्यसो हो भने यसो गर्नु पर्ला भाइ, उपप्रमुखलाई भेटेर सोधौँ न त के भएको रहेछ।
1: ए दिदीले सही भन्नुभयो, उसो भए दिपा र रमितलाई पनि सँगै लिएर जाउँ न।
0: ए भाइ बहिनी हो, तिमीहरू के गर्दैछौ त्यहाँ?
1: यता आइजाऊ न, एकपटक पारीको बाटो किन बन्न रोकिएको रहेछ बुझेर आउनु पर्यो।
0: कहाँ जाने दिदी, उपप्रमुखलाई भेट्न। नमस्कार उपप्रमुखज्यू।
2: ओहो नमस्कार नमस्कार, सबैजना आउनु भएछ त, ल बसौ बसौ, कति कामले होला, आउँदै नआउने साथीहरूलाई पनि देख्छु त।
3: खासमा कुरा के हो भने उपप्रमुखज्यू, हाम्रो गाउँपालिको बाटो बन्दै थियो, बन्दा भन्दै रोकिएछ, अनि यसो बुझ्दा पालिकाले बजेट दिएन भन्ने सुनियो। खास कुरा चाहिँ के रहेछ त भनेर यही आएको बुझ्नलाई।
1: ए त्यो पारीको बाटो बन्दैछ त, बनिहाल्छ नि, किन हतार गर्नु भा? हामी त बाटो बनाउने भनेर त आएका हौ नि, हतार नगरौँ न साथीहरू, बन्छ।
4: रोकिएको पनि 5-6 महिना भइसक्यो, के भएको रहेछ भनेर जानकारी लिऊ भनेर उपप्रमुख थियो।
2: बाटो बन्छ, समयमै बन्छ, म अरू के भनौ हेर्नुहोस्, अहिले अलि हतारमा छु, पछि कुरा गरौँ, अहिले चाहिँ म निस्केँ है।
4: अब यतिकै छोड्न हुन्न साथीहरू, बाटो के कारणले रोकिएको पत्ता लगाएरै छान्नुपर्छ।
0: अनि के गर्नु त अब, उहाँ त निस्किसक्नुभयो।
3: अब यसो गरौ दिदी, म सूचनाको हकको प्रयोग गरी जानकारी माग गर्छु, हेरौ न के भएको रहेछ।
5: हरेक नागरिक निगरानीकर्ता र प्रयोगकर्ता हो। तपाईँको गाउँमा भएका वा हुन नसकेका विकास निर्माण, सडक, धारा वा अन्य योजनाको निगरानी गरौं, शंका लागे उजुरी गरौं, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाऊ, सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं।
6: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
7: अरे सुन त, त्यो बाटो आज पाँदर त्यो बा
8: का हुई बाबु, अपने कलकलाइत रही, अपने काकर कलकलाइत रही, ले यू भुइया में के हो, काकर भुइया में धनवा नाल बाटी।
7: सुनिना दादू, हमरा दुनु जना बना में घास काटा रहल है, मरसा हम सब पका दल सुनिना दादू, हाली का करना होई एही न सकते हो, पता के नो पुगा पहिले से हुने रहा।
8: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाग के बैठनी हुई, यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई डालू अपने नी आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू झट्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन, तुरंत ही उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ल, राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश झट्ते ही आओ, हाँ सक्कू काम छोड़ खा।
9: बेटा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू झट्ट है।
8: सुनी बाबू, सपो कटलक मने है ना, जत्र साइकिल झट्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई, उपचार केन्द्र में ले जा डाले पड़ता, ऐसी ब्याला में सबसे झट्ते हुई ना यातायात के साधन राज्य पड़ता। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर उनके उपचार केन्द्र पुराई पड़ता।

0: उफ, मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई, मोर भर पर न संघरिया। मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डालू। अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आये
1: लगा दे दादू जाए
2: याद करी सात दस्त से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
3: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप दस लक मन बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था। सांप दस लक मन है न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले उ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854 89213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन उनका घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आज का हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकरा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: भरना खुले हो।
4: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टिट्यूट टीकापुर कैलाली में सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययन को लागि भरना खुले हो।
3: फारम भरने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म।
4: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरि सबमिट गर्नुपर्नेछ।
3: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसै कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ।
4: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ।
3: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ।
4: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
3: SEE, SLC वा प्राविधिक SLC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
4: नोट सामान्य चिकित्सा HA अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091-560-203 98-58-48-709 98-48-67-86 र 98-45-45-39-97।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
3: सासानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 9 गते 16 गते र 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला।
3: टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
5: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा भिडियो एक्सरे सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
5: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 5 जेठ 4 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
6: अस्तेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 4 जेठ 5 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
5: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 2 जेठ 6 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
6: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 जेठ 7 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
5: एकनगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 1 जेठ 8 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
6: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
5: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
6: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली। We'll be right back.

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के खोज खबर में अपने कौन स्वागत बा खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगा के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहलाप सम्रो पात्र और नेपाली पात्र में फेसिलिटीहरु बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से स्वास्थ्य सचेतना के लागि टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 के टोल टोल में स्वास्थ्य सरकार समिति गठन समिति स्वास्थ्य सचेतना के काम प्रति उमालाद्वारा टीकापुर अस्पताल के बिरेमहुकन फलफूल वितरण लदिया कटानो वनमारो जगतपुर सामुदायिक वन के मुख्य चुनौती लदिया कटान से सामुदायिक वन के क्षेत्रफल घटी ओ 2 लाख राशि के महिला फुटबल प्रतियोगिता के विजेता यूथ ऑफ टीकापुर पूरा खबर कैलाली के टीकापुर नगरपालिका स्थित धनसिंहपुर स्वास्थ्य चौकी समुदाय में स्वास्थ्य सचेतना जगैकला टोल टोल में स्वास्थ्य सरकार समिति गठन कलबाट वड़ा मरलक 17 ठो टोल विकास संस्था में 17 ठो स्वास्थ्य सरकार समिति गठन करके स्वास्थ्य सचेतना काम हुटी रहलबा यह संघ हरेक टोल विकास संस्था के अध्यक्ष स्वास्थ्य सरकार समिति के सदस्य रहना करके वड़ा अध्यक्ष के नेतृत्व में वड़ा स्तरीय स्वास्थ्य सरकार समिति फिर गठन हुई बा सरकार समिति के हरेक महिला समुदाय के स्वास्थ्य समस्या बारे छलफल करना मौसम अनुसार के रोग मछली बस्ना उपाय बारे जानकारी देना कलबाट वकर पाछ वड़ा स्तरीय समिति में तीन महीना में सरकार समिति के स्वास्थ्य संबंधी हुईलक काम और समस्या बारे छलफल हुई स्वास्थ्य सचेतना केला स्वास्थ्य चौकी सरसफाई खानपान दैनिक जीवनशैली स्वास्थ्यकर व्यवहार आदि बारे स्वास्थ्य सरकार समिति में छलफल सहजीकरण करना हुईलबाट स्वास्थ्य सरकार समिति के अध्यक्ष मालती साउथ हरेक महीना टोल विकास संस्था की बैठक में स्वास्थ्य फरक फरक विषय में छलफल करना कलक विशेष करके सरसफाई केला प्राथमिकता में देलक बोटिलोट सरकार समिति के पुरस्कृत करकलाक रू 1 लाख बजेट व्यवस्थापन कलबाट विगत 5 वर्ष से वड़ा कार्यालय के सहयोग में नमूना स्वास्थ्य केलाक धेरसिंह क्षेत्र में समेट के यी कार्य हुटिएलोट धनसिंहपुर स्वास्थ्य चौकी के इन्चार्ज एम बहादुर शाह 4 वर्ष कृषि लगायत के ध्योरसिंह क्षेत्र समेट की नागरिक सचेत करना स्वास्थ्य रहना उपाय बारे जानकारी देना हो सचेतना जगेना कार्य में काम कति हलबोटिलोट यह वर्ष मसे सरकार समिति स्वास्थ्य सचेतना क्रक आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराइना तैयारी करती रह शाहबोटिलोट यकरसंग स्वास्थ्य संबंधी समस्या समाधान हो सचेतना केलाक 17 ठो टोल विकास संस्था के मेसेंजर ग्रुप बनेलाबाट ग्रुप में स्वास्थ्य संबंधी हो सरसफाई संबंधी जिज्ञासा और सलाह देना कलक शाह के कहिबा वड़ा अध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला वड़ा नंबर 8 के पालिका में सफे विकट हो सीमा संग जोड़लक पालिका के हुलक फरक खालके हुना सिक्ना ठानके नागरिक रोकला के उपचार करल से रोकला ग्रह नई भेकलाक सचेत करना निरंतर रूप में ये कार्यक्रम करती रह बोटिलोट ठकुला के अनुसार चालीय आर्थिक वर्ष नागरिक विशेषज्ञ सेवा दिन स्मार्ट हेल्थ कार्यक्रम समेत शुरू करलबाट समुदाय में स्वास्थ्य समस्या और निदान बारे छलफल करना धेरसिंह मौसम देखना स्वास्थ्य समस्या पहचान में सहज हुईलक और समय में उपचार पैलक रोग फैलना में सीजोगना हुईलक यी कार्यक्रम निरंतरता देती रह ठकुला बोटिलोट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार रूपांतरणकारी विकास केला अनुरोध कति प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह स्मरण पत्र पठिलोट मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह प्रधानमंत्री शाह स्मरण पत्र पठिलोट मुख्यमंत्री शाह के आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट में क्षेत्रगत रणनीतिक योजना तथा

0: एक जेठ 8 गते समय बिहान 10 बजे देखि
1: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वार्ड नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजे देखि
0: झुंगा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वार्ड नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजे देखि
1: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वार्ड नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजे देखि
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
2: टीकापुर अस्पतालकै ब्रह्मेवकन फलफूल वितरण कलबाट नेकपा एमाले नगर कमिटीकै टीकापुर 33 मदनास्थित स्मृति दिवसीय अवसरमा कालिक अस्पतालकै ब्रह्मेवकन फलफूल वितरण कलबाट मदनार्थित स्मृति दिवसकी अवसरमा नेकपा एमाले धेरदर्शन कार्यक्रम कर्ना कर्लको अनुसार टीकापुर नगर कमिटीकै टीकापुर अस्पतालकै ब्रह्मेवकन फलफूल वितरण कलक टीकापुर नगर इन्चार्ज टपेन्द्र बहादुर रावल बोटिलोबाट इन्चार्ज रावल मदन भण्डारी जीवराज आश्रितकै विचार आँखा बढ़ेन काम नेकपा एमाले कतिहल समेत बोटिलोबाट फलफूल वितरण कार्यक्रममा सहभागी टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी अस्पतालमा भर्ना हुलक ब्रह्मेवकन अस्तमा फलफूल वितरण गर्न मजा काम कलकति धन्यवाद व्यक्त कलबाट अस्पतालमा भर्ना हुलक तीजना ब्रह्मेवकन फलफूल वितरण कलक बोटेटी नेकपा एमाले टीकापुर नगर कमिटीकी अध्यक्ष लक्ष्मण थापा फलफूल वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुकन धन्यवाद डेलोबाट फलफूल वितरण कार्यक्रममा टीकापुर अस्पतालकै व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष लगायत नेकपा एमालेकी नेता तथा कार्यकर्ता हुकुनकै सहभागिता रहल र नेकपा एमालेकी तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी हो संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितकै दासढुङ्गाना हुलक रहस्यमय मृत्यु दिन अर्थात जेष्ठ 3 गते प्रत्येक वर्ष एमालेकी स्मृति दिवस के रूपमा मनाइटिएलबाट जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जगतपुर स्थित जगतपुरमा सामुदायिक वनमा 28.80 हेक्टर क्षेत्रफल लक सामुदायिक वनमा अब 735 उपभोक्ता हो 613 घरधुरी आबद्ध हुलबाट नदिया कटानकै कारण उक्त वनकै क्षेत्रफल वर्षेनी घटी घटी रहलबा जानकी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 6 जगतपुर स्थित जगतपुर सामुदायिक वन उहाँकै स्थानीय नागरिक हुक्र 250 साल उहर संरक्षण शुरू कल वकरपाछ 2061 सालमा सामुदायिक वनकै रूपमा स्थापना हुल काभिनसम्म सञ्चालन भेटी रहलबा 2088.80 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलक सामुदायिक वनवासँग ब 735 उपभोक्ता हो 613 घरधुरी आबद्ध हुलबाट पूर्वमा कर्णाली लद्या पश्चिममा जगतपुर गाउँ उत्तममा रानी टप्पा हो शिवशक्ति पाताभाट सामुदायिक वन हो दक्षिणमा कैलाशेश्वर सामुदायिक वनवा के 4 किल्लाभित्र जगतपुर सामुदायिक वन अवस्थित भए यी सामुदायिक वन 3 खण्डमा विभाजित हुलबा सामुदायिक वनमा खयर सिसम सिमल सिरिस अस्ना साल भेल्लर हल्दु सिन्दुरी हरो कुसुम असिधा पिपल बेल सागुन मकाइनो बेदवास लगायतकै वन पैदावार रहलबाट सामुदायिक वनकै मुख्य आमदानीकै स्रोत रलक खयर रहल र सेपे वनक भित्र रलक बेदवासमा फे सामुदायिक वनकी पोहेक कर्णा कतिल नै हिट वाकरमा फे पोहेक कर सेकलक सामुदायिक वनकी आमदानी बहना देखिल्बा सामुदायिक वनमा बाघ बदेल चितल निलगाई खरायो हरिण बिलरिया स्याल बाँदर कबुकाल हत्या फेर रहना करत बघुवामा फेरि वनभित्र रहलको वनकै आसपासमा गाउँमा पैसके पशु चौपाईमा खैना कलस फेरि हत्या फे गाउँकी बस्तीमा पैटकी स्थानीय त्रसित गर्ना कलबाट यससँग मयूर कालिस वन मुर्गी सुगा ढुकुर तित्रादेशी राजरुङ्गी हुकुनकी फेरि सामुदायिक वनमा पैना गर्दै सामुदायिक वनकी मुख्य समस्या केला कर्णाली लद्या कटान कलबाट वनकै पूर्व पोहोर कर्णाली लद्यालाई कोगर वर्षेनी जंगल कटानी कर्ती रहलबाट लद्याकी कटान कर्के लद्याकी बीचमा टापु समेत बनक अवस्था रहलबा एकरसँग वन भित्र अलग वनमारा मफे सामुदायिक वनवाकी औरस प्रमुख समस्याको रूपमा देखिल्बा कर्णाली लद्याकी कटान वनमाराकी फैलावट सामुदायिक वनवाकी जोग्ना ढेर समस्या हुटिरहल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह होटेलबाट सामुदायिक वनवा करसेक्ना कुश तारा जाली लगायतकी वन संरक्षण केलाक प्रयास हुलेसे फिर लद्यामा तदबन्धन गर्न वनमारा नष्ट गर्न हाली समस्या हुटिरहल सामुदायिक वनवाकी अध्यक्ष निरबहादुर शाही जानकारी दिलबाट वनवाकी हेर विचार केलाक एकजना कार्यालय सचिव हो तीनजना वन हेरुवाला ढलबाट हाल नेपालमा पश्चिमी वायुकी संग स्थानीय वायुको प्रभाव रहँदा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी अनुसार एकर प्रभावकै कारण हाल कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै कम ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा हुइरहल भए आस कोशी प्रदेश लगायत बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा साधारणतया अवधि लग्न भए उसँग कर्णाली प्रदेशकै हिमाली भूभागकै ओ मध्य प्रदेश मानसिक बदी लग्न सम्भावना रहला से फिर बाकी हिमाली पहाड़ी और तराई भाग में मौसम मुख्यतया सफा रहना भा आगामी समय में कोशी प्रदेश के कम ठाउँ तथा बागमती और गण्डकी प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भाग के एक दुई ठाउँ में मेघगर्जन और चट्याङ सहित हल्का वर्षा तथा हिमपात के संभावना रहल बा। खोज खबर में फिर से विश्राम पाछा फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

0: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान,
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस् त?
3: मै नै जाइम, उहाँ अपन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846077417।
6: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। गर्मी मौसम संग अंडा के उत्पादन घटलक, मूल्य बढ़ल बा। नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ के अंडा के समर्थन मूल्य बढ़ी बाट संघ के अनुसार भारी अंडा के 515 प्रति क्रेट 30 ठो, मध्यम के रू 485 फार्म अदर कायम कर बाट संघ के सचिव मदन पोखरेल के अनुसार उपभोक्ता मूल्य प्रति गोटा रू 25 कायम कर बाट इन्सियाघ भारी अंडा 485 हो, मध्यम अंडा रू 425 कायम कलक वहां बटील बाट नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ के अध्यक्ष विनोद पोखरेल के 2 दिन विदा पर्यटक बहलक खपत बहरल संग गर्मी के कारण अंडा उत्पादन घटलक, माग बढ़ना कैके मूल्य बहलक बुटलो बाट अंडा की लागत मूल्य प्रति गोटा 19.12 रूपया पर्ना। जनटी अध्यक्ष पोखरेल की किसान भिन्न लागत मूल्य 49 लाख बुटलो बाट अंडा उत्पादन करती अलग थेरोसिन कृषि फार्म जारी कलक मूल्य के आधार में नेपाल डेयर्स कुखुरा पालक संघ समर्थन मूल्य जारी करती अलग वहां जानकारी दिल बाट। टीकापुर महिला 2 लाख रूपया राशि के क्लब स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजक इथप टीकापुर क्लब जितलाबाट काली खुलक फाइनल खेल के 2700 मिनट में इथप टीकापुर के खिलाड़ी सजिना स्यांगतांग कलक गोल नई निर्णायक खुलक बा। गोल लौटना नई सकल्प सैपाल इथ क्लब कोदावरी के उपविजेता में चित्त बुझेना पर्लबाट उपाधि जितना सफल इथप टीकापुर 2,200 रूपया नगद पुरस्कार ट्रफी खिलाड़ी हुकन के मेडल और प्रमाण पत्र पहले बाट उपविजेता सैपालीठ क्लब 1,01,111 रूपया नगद पुरस्कार ट्रफी और खिलाड़ी हुकन के मेडल पैनाफिल बाट 9 टीम सहभागी प्रतियोगिता के फाइनल में युथ अफ टीकापुर क्लब और सैपालीठ क्लब गोदावरी फाइनल में पुग्ल रही। युथ अफ टीकापुर के खिलाड़ी अनु माझी उत्कृष्ट खिलाड़ी, रोशन खत्री उत्कृष्ट प्रशिक्षक, सुजाता तामाङ उत्कृष्ट गोलर छेक, प्रतीक्षा मल्ल उत्कृष्ट स्कोरर बन्नबाट, अस्नाक सैपाल इट क्लबकै सरिता नाथ उत्कृष्ट डिफेन्डर, अनु राई उत्कृष्ट मिडफिल्डर बन्नबाट, विजय टीम हटिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर वडाध्यक्ष एके मोहन विकव एन फागे सदस्य अनिल मल्ल पुरस्कार वितरण गर्न रहे। टीकापुर नगरपालिका एक वडाध्यक्ष मोहन विक खेल प्रति के आकर्षण बढ़ना कल फोकन लागपन्ना बोटेटी विजेता टीम भर्खर खुलक सहयोग जुटेटी प्रतियोगिता सम्पन्न कलक आयोजक थप टीकापुर कलक धन्यवाद व्यक्त कलबाट। अस्थक आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग टू अन्तर्गत आज नेपाल वेस्ट कल्याण बीच खेलभुटीमा कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहानकै 9:30 बजे शुरू हुनेबा। समाचार सँग खोज खबर ओरल जेनासे पहिले खबरके मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छौ। स्वास्थ्य सचेतनाको लागि टीकापुर अस्पताल नगरपालिका वडा नम्बर एक टोल टोलमा स्वास्थ्य सहकार समिति गठन, समितिकी स्वास्थ्य सचेतनाकी काम गर्दै एमालेद्वारा टीकापुर अस्पतालकै वृक्षरोपण फलफूल वितरण। लद्दिया कटानु वनमारो जगतपुर सामुदायिक वनकी मुख्य चुनौती, लद्दिया कटान सामुदायिक वनको क्षेत्रफल खटी। ओ 2 लाख राशिकी महिला फुटबल प्रतियोगिताकी विजेता ठक टीकापुर। गीता बोगला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी ने धन्यवाद दी। टीका बोगला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई तो 11:12 की खोज खबर सुना सिद्धि सामुदायिक रेडियो टीका पूरा सुनती रवि राम राम।
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
8: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
7: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
8: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
7: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
8: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
7: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
8: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
7: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
8: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
7: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुर।
8: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
7: सम्पर्क फोन नम्बर 9868000008 र 9825637072।

0: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईँका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौं। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वान अन्डे भोज आगिनि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
3: अदि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाउ
2: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइ आउ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स म घर गहना बनाइ
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कूट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: ए बा आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आए कि होली मेरी चेली
3: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलि का दिन के ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहला महीना को तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
2: ठिक गरिबा आफै बाटो सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
3: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त हैन बुवा। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हर्या।

राजा की रो तेली जसी आखी गाजल लाखी दूध रखी चेली रह राम्री भाकी घर त पर्यो टीकापुर घर त पर्यो टीकापुर।

0: नहीं कमी सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना माता झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफर सर लग के घूमत रहते हूँ, फिर चेयर सर लग में तो हलचल नहीं कर मोहन सब हो गए पहनो तो पहला जाके
1: मोहन सब कहना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू रहते कह रहे मुहर सब पर देव गोपाल से वही न चलाए नी बिठा तब मुला से की वाकर में रह बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुहर सब मुहर देख पड़ना सब पहना नंग तहा सारे पकड़ा नहीं बीच
0: सर नो सब को देखना से का करना
1: सब पर मुहल देख पड़ना से थे जात से मुहल नहीं रह सकत अथवा मुलक कुछ देर पास असम थे सब पर दस सकत वह वर्ष मुहल अवस्था में थे सब पर हाथ से चलाए नहीं बीच बेंतनिक नम्मा लच्छी ले चला का मोल नि मोल कई का जाना से गिछा
2: मोल सापन से सावधान रही मोल वा मार्गी सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बास संफी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
6: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
5: डेलिभरीका लागि
7: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
5: टिकापुर कैलाली
8: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
6: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झनई फटाका आज था का कना हो बाबा के ओस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई लो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन मा भयो म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइज का टायरहरू सुपथ मूल्य मा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848518828

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनीना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोज्दै खोज्दै परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुगर बनाएकन ल बाटी
2: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाइ हौ जाइका हौ सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: कबू का तीर रहता कबू पेंसिल रहता कबू झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के ओस्त बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

चुनाव छ जित्नेहरू पाँचै वर्ष टिकुन, चुनाव छ जित्नेहरू पाँचै वर्ष टिकुन, हाम्रा लिए नि राम्रा कुरा उतैबाट।

जिगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समनस समाज के लक्षण आदिशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युतीय तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह का बैठक सक्कू सक्कू रेडियो प्रेमी मई गौर श्रोता संग स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहो मैं मिशन अमी के बैठक में बैठ के साथ देह तई भाई आकाश चौधरी और मई बात अपनी अपने संग्रह मैं मिशन संगारी कसिन हाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई मई फिर एकदम आराम बाटो अपने फिर एकदम आराम हुई कहना भरपूर आसने बाटो तो जे जहां हुई खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटल में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में हुई वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जने भी कन मैं अपनोकन जानकारी करती बाटू तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जने थे कर भी कार्यक्रम में इतने कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही तो कार्यक्रम हो निशाना निशाना में निशाना लगा एक लग आई भी जनौनी कहकुट दिमाग खेना प्रश्न थारण के अलखित दस्तावेज नासवान पुरखौली उकरण के शीर्ष संपत्ति झलकना मेरा कार्यक्रम हो ही तो अपने को जनौनी कहकुट दिमाग खेना प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज नासवानपुर खौली उकरण के शीर संपत्ति झलकेना मेरा प्रश्न लेके जरूर मैं आयल बाटू तो अपने ऐटे कर्वी कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे कर्वी कना जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक थोड़ा मायलो गीत से गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर्वी 091-5-62-55 लाइन खुलेगा।

हजुर, शाली हो अपन अपन मन, मना मिली कला से नहीं हो काराबाल। बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोड़ी डिलीराज चौधरी और आयशा चौधरी की आवाज में रहे रमाइलो गीत। अपने चाहिए भर्खर रेडियो खोलल विकल से रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz वस्ते के हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हमारे पात्रो मार्फत से अपने हम सुने से ठिकाना में अपने काम जानकारी करते बैठू। तो जे जहां हुई भी खेतों में, बारी में, दुकान में, मकान में, काम में, धंधा में, बिजी में, विपटाल में, यात्रा में, जहां हुई भी उठाऊ से हमारे कार्यक्रम में कॉल कर भी कोई टेलीफोन लाइन में बने बल करना तो हम क्यों। हजुर, राम राम। कोई नहीं हुई लागत में टेलीफोन लाइन में आए रहे, शायद कोई चलने की कोई बात नहीं। कार्यक्रम में सहभागी जना 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदम खुला हुआ। कार्यक्रम में सहभागी जने भी कल से अपने अपने को हमारे रमाइलो गफ हुई। विशेष करके आज के दिन निशाना लगे हो संगारियों के निशाना, जस्ते हमारे प्रश्न अपन के उत्तर फोन के लगे हो कार्यक्रम निशाना। विशेष करके कार्यक्रम में जनाऊनी कह को दिमाग खेन प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज नासवान पुरखौली के स्थिर संपत्ति झलकेना मेरा एक प्रश्न हो लगे हम संगारी। आजकल किसान दादू भाई हुकन के गांव ठाव में समाज में आजकल धान के बिया धरना समय हो गिलबा। कोई डबैले हुई भी, कोई छीट से कल हुई, कोई लेवकर थी भी, कोई छीटा थी भी, कोई छीटना प्रक्रिया में हुई भी, मतलब बिया छीटना समय यह हफ्ता भीतर लागत लागत अपने शायद यह हफ्ता के भीतर में अपने लगभग लगभग छीट के और आदर भी कहे कि आषाढ़ के पहलो हफ्ता भीतर फैन अपने खेतों में पेलना सुरसार बनाए हुई भी लागत और उहे तैयारी में अपने एकदम व्यस्त हुई भी लागत में। तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में कहीं सहभागी जनते कर भी कनाज करते कार्यक्रम में फैन से ठाव गीत जोड़ गीत के बाद समय ने बात डाल करते कर भी 091-561-255 लाइन खुल।

हजुर बिल्कुल रमाइलो बिजुली कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटोमा हामी सन्नीको साथ भेटै भाइ आकाश चौधरी औ यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मार्फत सुन्तीबाटी विशेष गरी सँगै आज बिल्कुल गर्मी बा हो आफ्नो कन घाम लाग्दा किन पक्कै भए आज बाहिर एकदमै गर्मी बा घाम बा घामके सँगसँगै आफ्नो कन पक्कै भए आज कुछ अल्छी पनि लागत हुई तर मैं अल्छी लागे कहाँ भए म अपने कन अस्त अस्त मजा मजा गीत संगीत सुने नै बाटो और अपने हमार संगे निशाना लगाए आई बिल्कुल अपने कर हमार संग संग निशाना लगाए भी कर से अपने कर हमार रमाइलो गफे हुई का नाम अपने कन जानकारी करना था तो फटाफट चाहिँ डायल गर्दै गर्बी 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन खुल्ला भएका नामै आफ्नो कन जानकारी गर्दै भनौँ तो डायल गर्दै गर्बी कार्यक्रममा सहभागी जनैती गर्बी करिब करिब 1:45 बजेसम्म यात्रा गर्बी सँगै पनि कार्यक्रममा यदि कालसम्म मैफेन कोनका मैफेन निशाना लगाइसकम जनाउनी कहकुट कना चिज हाम्रा थारू समुदायको एकदमै ऐतिहासिक चिज हो का यी अब हाम्रो यी चिज हाम्रो नै भुलाएको पर्न आजकलको युवा हुँ यी चिज हामन बचाइक पर्न हो और यी चिज हाम्रो सबको जाने संरक्षण सम्वर्धन और प्रबन्धन पनि गरेको पर्न हो काकि संरक्षण करके किल्लाइ हुई के संरक्षण सम्वर्धन करके किल्लाइ हुई यी प्रबन्धन पनि गरेको पर्ल का तब मारे तब किल हाम्रो मतलब उचित से हमरे कुछ बेनिफिट ले सके था अब एक तो कहे बा संतान जन्मैना कि बराबर बात नहीं होगा जन्मैना का ना बराबर बात नहीं हो उहीन संरक्षण पेन करे पड़ल का मतलब उचित है जन्मा जन्मो के उहीन पालन पोषण मतलब करे पड़ल ओके प्रबर्धन पेन करे पड़ल का ये उहीन शिक्षा दीक्षा का चीज बा नहीं उहीन आवश्यकता पर्न चीज का वो सब चीज मतलब सब कुछ चीज हमन पुगाए पड़ल का तब हमारे हमें कठी सब चीज करे पड़ना हो तब किल हमरे बढ़िया कहलाप का कहती ठीक ठाक गीत जोड़म गीत के पास मैंने बात डाल करते कर विश्व में कहना भी 561-255 लाइन खुल रही तब सबको इंजॉय करी ई रमाइलो गीत से।

हजुर फुलमा तिया तोहार घेचा मे सुतिया हो बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडली कार्यक्रममा बाटोमा हामी छन् भर्खर रेडियो खराल विकल सन्धिवाती रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapur.org टिकापुर एफएम डट आज मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत सुनि सके इन्टरनेट के पहुँच सरसँगारुकै आफ्नै जहाँ बाटी वेटाउँछ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइ सके बिल्कुल कार्यक्रममा अपने को हमारा रमाइलो सहभागिदारी रमाइलो गफी कनमै चाहम और अपने संगे संगे हमारे मजा मजा गीत संगीत छन् हमारे संगे संगे लै जाने प्रभाटी तो जे जहां भी कार्यक्रममा सहभागी जने देखकर भी हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहीबार आज हो सोमवार के दिन काकरे की सोमवार के दिन हमारे जस्ते शुक्रवार शनिवार आइतबार तीन दिन नै थी तो एक्सेप्ट आज हमारे सोमवार आई थी साथ में उसे के मंगलवार बुधवार बिहीबार हमारे प्रत्येक दिन फरक फरक विषय वस्तु मेरा फरक फरक ढांचा में लगी थी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है अपने उनके संगे हमें आगे बढ़ी थी ओके तो कार्यक्रम में सहभागी जनता का भी कार्यक्रम में आईटे कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागी दरी रमाइलो गफ ही का नाम है अपने का निवेदन करम विशेष करके अपने कन तो कार्यक्रम में चाहिए बिल्कुल आपको जितने हिचकिचा के मैफिन कौन का मैफे कार्यक्रम में चाहिए निशाना लगाई सकम मैफिन कार्यक्रम में चाहिए बिल्कुल सहभागी जनाई सकम कमर कस के आई सी कार्यक्रम में यात्रा कार्यक्रम का नाम है अर्ज करते फैन समय नई ढेर बटवा के एक ठाव गीत जोड़म अपने चाहिए डायल करते कर भी 091-5-61-255 का लाइन खोलेगा तब सुन फ्रेंड्स एक ठाव गीत जोड़ के एंजॉय करी ये रमाइल गीत अपने हुकन के लाग।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछै हुन्छ स्वागत गर्थी ठिबर ठाउँ एकैछिन हामीले व्यापारिक ब्रेक लिन हुँदै व्यक्ति व्यापारिक विश्रामको पास समय नै बाटो रेडियो छोडेको कहाँ पनि जी तपाईँले एकैछिन सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेकको पास समय नै बाटो रेडियो छोडेको कहाँ पनि जी दि
1: सापन कुछ नहीं कराई सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गई कुछ कराई तो वो सब कुछ सांप दिखा फिर नहीं रहता
2: दिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिंदा दाई
3: लिया नेपाल में पाँच दिन दिखा सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गई था जो उन खास कह कर रात के समय में घर भीतर बैठा से कटल से निबाई फिर सियाकत तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक्वा हुई से था और रठ डोम जो बड़ा रिसहा निरिक रठ निकर फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संध्या ध्यान देख पड़ था निकर कटल से फिर लक्वा हुई से था वो और रठ कैरी जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत के पाची होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकाराना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बर्खा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिदे सापन का दसाई का घटना ढूर बिना कर लग पा दे
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वो फिर यदि सब पर दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के उस तपाटी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: था। का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गोर झोला आन लाटी ना, कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

हजुर, नयन नयन मोरी दुई नयन बिल्कुलै हाम्रो अब लगभग कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल टाटा बाबेको एकजना बेला होटलबाट रेडियो सुनको साथ दिलाउँदै सबको झन् धन्यवाद यति अन्तिम रमाइलो गीत छोर्ती टेक्मेवटके साथ दियो भाइ आकाश चौधरी धन्यवाद यति माइ मिसिना गेछ हाम्रो राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन केवल शुभ रहे रेडियो टिकापुर एफएम।

समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকাল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহার নাই নিকর ছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইহাঁ হের ই পত্রিকা মে লিখল বা মনীষ মেডিকাল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরানি হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুইটা ওই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্যহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: घरेको भए हैन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
5: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
0: टीकापुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा प्रजनन उमेरका महिलाहरूका लागि निशुल्क फेस्टुला रोग स्क्रिनिङ, पाठेघर खस्ने रोगको स्क्रिनिङ, रिङ पेसरी एसपीभी डीएनए विधिबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ, स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा परामर्श सेवा र यौन रोग सम्बन्धी जाँच उपचार तथा परामर्श सेवा शिविर तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9, Z4 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5, Z5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

0: by download gunhos NEPA app.
1: Pali man ko NEPA, Nepali pan ko NEPA.
2: I hope ado, ghar kaha sirjai bo? Paacha se shuru karal manai, ghar sirjar sekla?
3: Ari ka karuri buriya, kathua khojat khojat pareshan ho gel batu. Milbo milbo ni karat, ka kaina ho ka?
2: Mistaran barjanauka na ghar heru na? अट्टा सुगुर बनाइल बाटा अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त्र बनी हो ना वट्टफे पटानी हुई कि गंगवा बुरो होना कबू कहूँ घूम जाए ता था पाए
4: यूपीबीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले वेरो बंद करे वेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लक मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326
6: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उष्ट बाटी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड को 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा सो सभाले गर्ने संस्था को नया कार्य समिति को निर्वाचन समेत निम्न मिति समय र स्थान में हुने भएकाले संस्था का संपूर्ण शेष सदस्य महानुभावहरूलाई संस्था को शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले प्रमाणित गरी जारी गरेको फोटो सहित को परिचय खुल्ने कागजात का साथ उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ मिति 2083 जेठ 9 गते शनिबार समय बिहान 8 बजे देखि बेलुका 5 बजे सम्म स्थान ओम प्यालेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 091-520-283

0: ए अभिषेक, त्यो लामो घाँसको झारतिर नजाऊ है।
1: आया मरे नि बाबा। आया
0: ए साथी हो, एकछिन फुटबल बन्द गर त। विवेकलाई के भयो? उता झारतिर नजाऊ भनेको थिए।
2: ल हेर त, सर्प भाग्यो त्यता। टोक्यो के हो विवेकलाई? अरे स्कुलको फुटबल हेर्न आएको, झन् के दुर्दशा पो आइपर्यो।
1: ल ल, मलाई त सापले टोक्यो नि, मर्ने भए म।
0: विवेक नाति साथी, ल शान्त भएर बस, धेरै नचलिकन बस, हामी तिमीलाई स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउँछौ। ए पारस, ऊ त्यो पल्लो घरको दाईलाई मोटरसाइकल लिएर आउनु भन त।
2: हो विवेकलाई यहाँ खुल्ला ठाउँमा सुताऊ, धेरै झल्याङ झुरुङ नगराइकन। मेरो यो कापीले उसलाई हम्किदिन्छु, पिटौलामै टोकेछ, सुन्निँदैछ। टोकेको ठाउँलाई छुन चलाउनु हुन्न है।
0: खै त, म विवेकलाई यो सजिलो होस् भनेर उसको कसिएको पेटी टाँकहरू बिस्तारै खोलिदिन्छु, अनि घडी र औठीहरू पनि फुकालिदिन्छु। खै खै,
2: हुन्छ रोशन, म त्यही बेलामा विवेकको जुत्ता र मोजा बिस्तारै फुकालिदिन्छु।
3: धेरै जसो सर्पको डसाई खतरनाक हुँदैन, समयमै उपचार गर्न सकेमा विषालु नै सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई पनि बचाउन सकिन्छ। सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई छिटो भन्दा छिटो उपचार केन्द्रमा पुर्याउन सके उनलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
4: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: नरेन्द्र दादु, मैले आफ्नो फोनलाई त्यति डर त्यागेन। है भौजी, कहाँ बाटी?
7: ऊ गुन्डीमा सुटल बाटी बाबु, चोली नभरि।
6: भौजी कहाँ थिए काटन अप्नहन? हर खाजर पाबेल त सफा सुखर बनाइर बाटी त, तर फेरि काटी त जारल ना अप्नहन।
8: यहाँ पोलिको कत लगो नानी, अप्ना एम्बुलेन्स छैन, खबर त कर्मबाट कटा बेर म को आपुम ना हो
6: ना। ते भौजी हाम्रो बाटी अप्नहन कुछ नि हुई बिन गुहारहना जिन्छन एक दिन को नरेश दाडु एम्बुलेन्स छैन, समय लाग ठा नगर केक्रो मोटरसाइकल बाको लगे उहेमा बैठा के भाउजी हेन सर्पदंश उपचार केन्द्र लैजिन तयारी गर पर।
7: यी बेला त खैन जात फे दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दिदी।
6: हो हो अब न ठिक कली डाक्टर रो निकट सम गेरेमेन कुछ थे खवाई नि हुई।
9: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए नाथ सपवा कटलक अंग न स्थिर बनेना प्रयास कर पठा टम्म कस बेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाको लगे फफर करारी बेरम्या अक्टेलेसी झन समस्या बिना भिलुकुसी बेरम्या न शान्त रह सहयोग गर पठा क्युमने सपकटलक ठाउँ से उपर दौरीले कस खब नाफे कठ असिक गर्न से रक्त संचारमा समस्या हुई सक्ठा जेहीले करबेल सप्प दशलक शरीरको भाग काट ख फाँक पर्न अवस्था थे आइसिक्ठा।
10: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता मलाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिठा।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: नवजीवन सहकारी संस्थाकी 32औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले को से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लक संपर्क नंबर 091520283।
12: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

राजन परीक्षित श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद प्रिय प्रतनामृत को राजा का छोरा तेरा भाई मध्य में जेठा छोरा आग्निद्र ने तपयामी बस को ठावे राज्य कर आग्निद्र नामगृत को राजा को अब इस किसिम राज्य संचालन पक्ष में नौवटा छोरा जन्म नगो सरकार नौवटा छोरा मध्य में नौ भाई राज्य को अभिलाषा कायम राख तैयारी भे लौ तो नौ भाई जम्मूद्वीप को नौ खंड में विभाजन कर दी बक्सु राजा ने पहिलो खंड को नाम हो अजनाब नाम खंड दोसरो किम पुरुष तेसरो हरिवर्ष चारो इलाव्रत पांचो रम्यक छैटो हिरण्यमय सातो कुरु आठौ भद्रासुर नौ केतुमाल नामगर को खंड होने गो सरकार त्यसमा नौवटा खंड में नौ भाई को नाम ने प्रख्यात भएर राखिएको छ जिसमध्ये में तपाई हामी बसेको ठाउँ चाहिँ मध्य भूमंडल रेखा में पर्छ जिसको जब भूमध्य भाग में इस किसिम रहेको जिसको नाम हो सुंदर शहर सुंदर नगरी सुंदर स्थान अजनाब नाम गरेको खंड त्यो अजनाब नाम गरेको खंड में नाभी राजाले राज्य गर्नुभयो। वहां नाजी राजा राज्य संपा करे राजा आग्नेद्र जंगल सरारी हो प्रेव्रत ने सात दिन छोड़े कई लगेन आग्नेद्र नाम का राजा लगेन आग्नेद्र का छोरा नाभी ने संतानोत्पादन करना को निमित्त भगवान नारायण वासुदेव को प्रार्थना कर नाभी नाम का राजा जन्मनुभो नाभी राजा ने बड़ो प्रेम साथ विनती करो बड़ो आनंद को साथ में ध्यान भो मनन भो कीर्तन भो नाभी नाम का राजा नाभी राजा का छोरा महाराज संतान नौना को कारण भगवान को प्रार्थना करे श्याम सुंदर भगवान गर्छौं उपकार।